0: Restaurant Samosa House Indian Cuisine and Sweets Open 24 hours Unit 2154 4310104 Avenue Northeast Calgary Call 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा सामान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लगवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515-2935-19th Street, Northeast Calgary.
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
3: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
3: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222
4: Salam, Namaste, Sasikala, Adab, Ya Ali Madad. Yes, KWJ Spotlight is on air right now, only on the radio Susangam, 94.7 FM. Today, we are talking about cricket. Today, the spotlight is cricket. You can see there is a bat behind me, where we have a Calgary sign. And of course, One and only, our official cricket analyst, Hamza Bhatt, Hamza Bhai, from the Calgary Cricket Academy. Hamza Bhai, Assalamu alaikum, kaise ho yaar?
5: वालेकुम सलाम जलाल भाई आप बताएं कैसे हैं
4: गुड टू सी यू अगेन
5: थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन
4: या हमने जो आई थिंक 2 महीने हुए उसको हमने जो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप पे हमने जो शोज किए थे
5: Yes.
4: बड़ी अच्छी फीडबैक आई
5: इट वाज फैंटास्टिक
4: हमारी जो बीना जी है हमारी जो है कैलगरी की जो हमारी जो रेगुलर लिसनर तो उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया था और बाकी लोगों का भी फीडबैक आया था आई एम श्योर कि आपको भी जो फीडबैक आया था लोगों ने आपको क्या क्या बताया था क्या आपके क्या फीडबैक थे इफ यू डोंट माइंड
5: आई थिंक करिकुलर के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स तो इसकी डेवलपमेंट में कोई भी चीज हो वो कम है मेरे ख्याल से तो आपने 2 मंथ्स का गैप दे दिया इट शुड नॉट हैव हैपेंड यू शुड हैव एटलीस्ट यू नो वंस अ वीक ये स्नैच होना चाहिए ताकि लोगों को कम्युनिकेशन हो लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है एटलीस्ट इंटरनेशनल नहीं तो कैलगरी की लोकल भी आप डिस्कशन कर सकते हैं
4: तो हमने पिछले 2 महीने में क्या कि हमने जो है नो वी हैड अ केडब्ल्यूजे स्पोर्ट्स टॉक हमारा शो हुआ था लेकिन वी टॉक अबाउट द जो कैलगरी फ्लेम्स एंड जो एनएचएल तो उसकी भी हमें बहुत अच्छी फीडबैक आया कि हालांकि ऐसा कहीं होता नहीं है किसी लोकल रेडियो स्टेशन पे कि हॉकी के 4-5 पैनल के साथ हमने शो किया था हॉकी के जो हमारे जो कोलीग्स हैं वो भी एक्सपर्ट है वो भी खेलते आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा फीडबैक आया यूट्यूब पर भी हमने उसको अपलोड किया उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया ऑफकोर्स वी विल बी डूइंग मोर एंड मोर होपफुली आई विल गेट मोर डेज हियर सो आई कैन डू मोर एंड मोर ताकि उसमें क्रिकेट भी आ जाए हॉकी भी प्लस फीफा आ रहा है वी गोना हैव अ स्पेशल शो ऑन फीफा एज़ वेल
5: एग्रीड जलाल भाई कोई भी स्पोर्ट हो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट यू नो इट्स फैंटास्टिक
4: तो हमजा भाई यू आर फ्रॉम द कैलगरी क्रिकेट एकेडमी नफको विल टॉक अबाउट योर टीम प्लस इन जनरल जो है जो अपना जो है लोकल क्रिकेट पे हो रहा है आजकल तो आजकल जो है कैलगरी क्रिकेट एकेडमी CCA की क्या अपडेट है
5: CCA ने अभी तक सीजन के टू मैचेस खेले एक हमारा मैच वॉश आउट हो गया अप्रैल 26 को था और सीजन स्टार्ट हो गया 40 ओवर का हमने मैच लूज किया वी लॉस्ट दैट गेम
4: 40 ओवर
5: हाँ जी
4: अच्छा अच्छा ओके
5: हमारी जो कंपटीशन में जिन्होंने कैलगरी स्टैलियंस थे दे प्लेड वेरी वेल और उसके बाद T20 में हमने कल ही हमारा मैच था
4: Uh-huh.
5: And we scored 207 in 20 overs.
4: Uh-huh.
5: And the team, dusri team jo hai wo chase nahi kar saki.

0: Yeah.
1: They were bowled out at 150. So we won the game.
0: Okay. तो आपने कहा कि जो कल मैच था वीकडे में
1: जी जी हमारा वीकडे में T20 वीकडेज में अभी भी चल रहे हैं करंट हमारा मैच नहीं है मगर अभी भी लीग के मैसेज चल रहे हैं
0: अगर अच्छा, कोई वीकडे में भी चलता है
1: मैच देखना चाहता है अगर सबसे क्लोज देखना चाहता है तो ये वेस्ट विंड की ग्राउंड है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे आप उधर जाके देख सकते हैं अगर कोई नॉर्थ वेस्ट में रहता है इंग्लैंड की ग्राउंड है एवरी डे मैच हो रहे
0: हैं
1: ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे 4 days और सैटरडे संडे तो 40 ओवर्स है तो अगर आप बोर हो रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं और कुछ करने के लिए नहीं है तो आप बच्चों को ग्राउंड में लेके जा सकते हैं उनको क्रिकेट दिखा सकते हैं
0: nice, okay.
1: ताकि वो भी खेलना चाहें जो कि दूसरे लोग खेल रहे हैं
0: यस यस यस यू नो मेरी मुलाकात हुई थी एक जो है वन ऑफ द वाइट पर्सन उन्होंने कहा कि ने, उसने जो है क्रिकेट को जो है ड्यूरिंग पैंडेमिक उसने देखना शुरू किया एंड ही इज सो इंटरेस्टेड नाउ ही इज हुक्ड ऑन अ क्रिकेट नाउ
1: हमारी अकेडमी को आके ज्वाइन करें दूसरी यहाँ पे अकेडमीज हैं हमजा तारिक की अकेडमी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप CCA को ज्वाइन कर सकते हैं देर इज ऑलमोस्ट 150 क्लब्स राइट नाउ इन कैलगरी यू कैन ज्वाइन एनी क्रिकेट क्लब एंड प्ले क्रिकेट एंड एंजॉय इतना खूबसूरत मौसम है आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको प्रॉपर ग्राउंड मिलेगी आपको पूरा इक्विपमेंट मिलेंगे आपने तो आके एंजॉय करना है ना फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट कॉर्पोरेट लीग है अगर आपके आप बिजनेस चला रहे हैं आप अपने बिजनेस की टीम पिच इन कर सकते हैं और कॉर्पोरेट लीग CDCL के अंदर आप अपनी टीम डाल सकते हैं कॉर्पोरेट की जिस तरह आपका रेडियो है आप इसकी भी टीम डाल सकते हैं तो इफ यू नेवर वर्किंग यू कैन स्टिल प्ले क्रिकेट सो अनस्टॉपेबल क्रिकेट इन नेक्स्ट 90 days इन कैलगरी until September end. So I would encourage all the listener, come and enjoy the games. Chai leke aaye, apni coffee leke aaye. Westwind Cricket Ground hai, jo bilkul North East ke hub mein hai.
0: Yeah, bilkul.
1: Phir agar aapko zyada dur jana hai, to aap inland, agar North West mein reh rahe hain, to aap inland mein aaje, inland Athletic Park hai. So it's a lot of opportunities for everybody.
0: Arey na, I think jo hai apna Gucci hai, ke jo hai apna weekdays mein bhi hote hain. To wo shaam ko kitne matches shuru hote hain?
1: 6 baje.
0: 6 baje se shuru. Okay, to is there any website ki jahan par log ja ke dekh sake kya kya matches ho rahe hain? Any website?
1: Ji ji, aap Calgary Cricket TV Google kare, Calgary Cricket TV YouTube ke upar. You can go and watch the game right now. Aap online bhi dekh sakte hain. Hamara kal ka match pada hua wahan pe.
0: Acha,
1: nice. Aap dekh sakte hain. और इसमें सारी इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है फिर आप क्रिक क्लब्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और फिर आप उसके ऊपर कैलगरी क्रिकेट कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग खोलें उसके ऊपर सारे मैचेस आएंगे ऑनलाइन अभी मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ
0: जी, जी जी
1: करंट मैच चल रहा है उसका पूरा स्कोर कार्ड चल रहा है ये देखें ये मैच हो रहा है सेंट जॉन्स का आई थिंक थोड़ा लाइट है तो सेंट जॉन्स का मैच हो रहा है तो उनका लाइव स्कोरिंग चल रही है आप इसको ऑनलाइन मैच को दे सकते हैं इसमें सेंट जॉन्स की एलीट की टीम है उन्होंने 123 किया इन 20 ओवर्स और किंग्स की टीम है वो चेस करी है किंग्स 2 की उनके 57 फॉर 1 है तो ये भी करंट स्टेट है क्रिकेट
0: अरे वाह
1: करंट मैचेस हो रहे हैं
0: तो ये मुझे पता नहीं कि कितना वो है अपना नेक्स्ट लेवल है राइट
1: नेक्स्ट लेवल है सारे मैचेस आपको टीवी पे मिलेंगे लीड के जो मैचेस हैं वो सारे टीवी पे पड़े हुए हैं आप कैलगरी क्रिकेट टीवी यूट्यूब के ऊपर ओपन करें और यू कैन वॉच द गेम
0: तो यू नो अभी जैसे बहुत से लोग जो कैलगरी मूव हो रहे हैं
1: जी
0: किसी भी फील्ड में हो चाहे अपना आईटी में हो या तो कंप्यूटर साइंस में हो डॉक्टर हो स्पोर्ट्स में हो लोग मूव हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स मिल रहे हैं आजकल
1: जी बिल्कुल बिल्कुल टीम्स इसलिए तो पहले इट यूज्ड टू बी ओनली 6-7 टीम्स और 10 टीम्स इनिशियली बैक इन 15-20 इयर्स बैक बट नाउ वी हैव 140-150 टीम्स राइट तो जो भी आते हैं वो फिर लड़के आपस में मिलके टीम बनाते हैं एंड देन उसको लीग में रजिस्टर करते हैं तो ये एक कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग है फिर इसके अलावा एक IPL की लीग है जो मार्टिनडेल की ग्राउंड में होती है तो इस तरह दो लीग है मगर जो सबसे हैवी है और सबसे बड़ी लीग है वो कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग है जिसके मैचेस आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी और यूट्यूब पर भी
0: तो यू नो लेट्स से यू नो इफ आई एम न्यू हियर अगर मुझे अपना कोई भी टीम को कनेक्ट करना व्हाट डू आई डू
1: देखें आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग अगर आपको उधर उनको ईमेल रिक्वेस्ट कर सकते हैं cricketcalgary.ca एक वेबसाइट है आप उधर जा सकते हैं उधर जाके आप किसी भी टीम को सर्च करके आप कैलगरी क्रिकेट एकेडमी को हमारी टीम को सर्च करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एंड यू कैन प्ले क्रिकेट व्हेनेवर यू वांट टू
0: दिस इज सो नाइस
1: इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स दो राइट
0: राइट
1: अच्छा अब उसमें भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर जलाल भाई आपके पास टाइम हो तो मैं एक्सप्लेन करूँ
0: कैलगरी में
1: तो इस कैलगरी में लेवल्स हैं जिस तरह एक लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इसी तरह एक एलीट है सबसे ऊपर जिसमें सारी कैलगरी की क्रीम खेलती है

0: हमारी गुड फ्रेंड जो है सोनी मिर्जा, शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काम उसका अच्छा है. अगर आपने किसी को जो है मेकअप करवाना हो फॉर द, अभी जो है ग्रेजुएशन आने वाला है, हमजा भाई भी उनको जानते हैं, शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. और उनका फोन नंबर है 5878889316, 5878889316. और हमारा आखिरी कास्केट प्रिंटिंग, आवर गुड फ्रेंड शिफा शफीन जीवानी, अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना हो, डिजाइन करवाना हो, ही इज माई गाय एज वेल. शफीन जीवानी 4032520222 फ्रॉम कास्केट प्रिंटिंग. हमजा भाई
1: जी सर,
0: पिछले दो महीने में जब भी आपका सीजन नहीं चल रहा, अभी यानी सीजन अभी शुरू हुआ
1: जी जी,
0: तो अपना एज ए प्लेयर, एज अपना क्रिकेट अकेडमी, व्हाट डू यू गाइस डू?
1: हम इंडोर प्रैक्टिस करते हैं.
0: कहाँ पर
1: फैसिलिटीज हैं? कवर ड्राइव है, फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी है.
0: हाँ,
1: काफी फैसिलिटीज हैं जो हम इंडोर प्रैक्टिस करते हैं.
0: तो वहाँ पर उसके क्या पे करने का, क्या करो?
1: अब आपने नेट बुक करे, उनके चार्जेस हैं अराउंड $50 per hour.
0: ओके,
1: यू जस्ट पे देम एंड यू नो यू जस्ट प्रैक्टिस.
0: प्रैक्टिस, ओके, ठीक है ठीक है. तो वहाँ पर आप अगेन, अगर आपने नेट प्रैक्टिस करनी है, ऑफ कोर्स यू नो बाय ऑल मींस यू कैन गो टू,
1: में भी कर सकते हैं या, और जब रेनी डे है और आप कैलगरी में हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पे उनके पास सिमुलेटर भी है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें.
0: वो क्या होता है
1: सिमुलेटर? आपने बस जाके बैट पकड़ना है और थ्रो करनी है बॉल को.
0: अच्छा, बॉल खुद ही आता है?
1: बॉल खुद आएगा.
0: गुगली टर्न फास्ट
1: सनरेज मॉल में, यहाँ बिल्कुल एंट्री के ऊपर आप जब.
0: अच्छा, सनरेज मॉल में?
1: जी जी जी जी, कवर ड्राइव.
0: ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, कवर ड्राइव के नाम से. ओके, क्लियर यू गो. थैंक यू सो मच. सुहेल सलीम नाम है, देंगे सस्कैचुआन से, ही लिव्स इन जो सस्कैटून. वहाँ पे कोई टीम है?
1: सस्कैचुआन में भी बहुत क्रिकेट है, सस्कैचुआन क्रिकेट एसोसिएशन है, उनकी प्रॉपर लीग चलती है वहाँ पे भी.
0: और मैं सोने में देख रही हूँ, और जो माइक डिलन साहब भी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा, आजकल जो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है, व्हाट्स द अपडेट, अपना क्या सीरीज चल रही है?
1: अभी तो पहले PSL पाकिस्तान में हुई है फिनिश रिसेंटली, जलमी ने जीता.
0: ओके,
1: और दे प्लेड वेरी वेल. बाबर आजम वाज अ कैप्टन एंड ही लीड फ्रॉम द फ्रंट.
0: अच्छा,
1: मैचों में परफॉर्म भी किया, स्कोर भी किया, ही वाज अ हाईएस्ट रन स्कोरर. और दे एंडेड अप विनिंग द चैंपियनशिप व्हिच इज गुड थिंग, दे डिजर्व इट. और उसके बाद उसमें जो छोटी सी जो नई चीज थी
0: जी,
1: वो उसमें ये था कि उसमें जो हैदराबाद की टीम नहीं आई थी. हैदराबाद की नई टीम PSL थी, PSL में, एंड दे ऑलमोस्ट विन द चैंपियनशिप. उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया, और सारी जो टीमें जिस तरह लाहौर, कराची, और ये सारी टीमें नहीं क्वालिफाई कर सकी, ये बिग नेम्स थे, बट हैदराबाद ने.
0: ओके, तो ये तो था PSL. व्हाट अबाउट IPL?
1: IPL में भी टीमें जा रही हैं. RCB इज ऑन द टॉप, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. विराट कोहली था, आज भी वो मैच जीते हैं, उन्होंने 192 चेस किया. और उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है,
0: 192, वाह, हो गया.
1: गुजरात है, गुजरात इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो ये दो तीन टीमें हैं जो IPL में भी, उनके प्ले ऑफ होने हैं.
0: तो यू नो, अभी जैसे विराट कोहली है, आई थिंक ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट, बट ही इज प्लेइंग ऑन IPL लेवल.
1: नहीं नहीं, ही डिड नॉट रिटायर.
0: नहीं,
1: वो T20 में रिटायर हुआ है. 450 ओवर वो ODI अभी भी खेल रहा है, एंड ही इज स्कोरिंग रन्स. And he will play the World Cup with Rohit Sharma.
0: With Rohit Sharma, अच्छा अच्छा, रोहित भी अभी भी है.
1: वो भी रिटायर हो गए, T20 से रिटायर हो गए.
0: तो अच्छा, तो इसमें क्या फायदा है?
1: क्या
0: फायदा? No, आपको, they can make money. जो भी अच्छा स्कोर भी करे तो, because these are good players.
1: Oh yeah,
0: you don't want to see them retiring soon, right?
1: It's not about your level of competence. It's about your fitness. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट और इवन कैलगरी में भी, अगर आप जिस तरह हम एलीट में खेल रहे हैं, इवन यू कैन फील कि मेरा भी, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, राइट? जिम जाके अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है.
0: yes.
1: आपने क्रिकेट में सस्टेन करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट. एंड दीज गाइज, इवन रोहित शर्मा, इफ यू कंपेयर, 1 year बिफोर हिज टमी वॉज आउट, बट नाउ यू वॉच हिम, ही लुक लाइक अ बॉय. So he changed, he transformed himself, you know, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, एंड he is doing very well now. He is playing IPL and he is scoring runs.
0: Oh God, okay. Or what about other series? और क्या हो रहा है?
1: और अभी पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज हो रही है, और पाकिस्तान बड़ा बुरा हारा है.
0: वही मैं स्कोर देख रहा हूँ अभी.
1: ड्रॉ होने वाला मैच था पहले, पाकिस्तान में पहले बांग्लादेश ने 413 स्कोर किया, और पाकिस्तान की टीम ने अच्छा फाइट बैक किया. पाकिस्तान के नए ओपनर है यूनस खान के, मेरे ख्याल से भांजे हैं, उन्होंने अजान है, उन्होंने पहले ही डेब्यू मैच में 100 किया.
0: नाइस.
1: और एक और लड़का फजल था, उसने भी बहुत अच्छा स्कोर किया. फिर दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि चार दिन गुजर गए हुए थे, बांग्लादेश ने 240 करके लंच के टाइम पे, ना आखिरी डे था, एक दिन इनका वॉश आउट भी हो गया था.
0: अच्छा,
1: तो बांग्लादेश की टीम ने डिक्लेयर कर दी कि चलो हम

0: can take a chance. Uh-huh. Or apparently Pakistan ki team 160 pe out ho gayi. Ek half mein.
1: Oh.
0: In 3 hours. So ek unfortunate part hai. It ye nazar aata hai ki Pakistan mein jo selection ho rahi hai wo merit ki base pe nahi ho rahi.
1: Aur Bangladesh won by 104 run.
0: 104 run.
1: Yeah, aise kaise?
0: 104 run to nahi.
1: Bangladesh won by 104 run.
0: 104 runs, yeah.
1: Yeah. तो यू नो तो ये आखिरी इतना यानी जो आखिरी सेशन में सारी टीम का आउट हो जाना
0: अनफॉर्चुनेट पार्ट
1: है तो इसमें कैप्टन का कसूर है कि नहीं कि सिलेक्शन वालों का कसूर है
0: नहीं आई थिंक इसमें कैप्टन का कसूर तो नहीं है इसमें सिलेक्शन कमेटी है जिस तरह आकिब जावेद हेड कोच है
1: आकिब जावेद हेड कोच है अभी
0: हां जी और उनकी उनके ऊपर लायबिलिटी आती है कि सिलेक्शंस वो कर रहे हैं तो वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे बाबर आजम ने पीएसएल में हाई स्कोरर था वो उसको टेस्ट मैच में क्यों ड्रॉप कर दिया समझ नहीं आई इस चीज की कि क्यों उसको ड्रॉप किया जब वो पीएसएल में उसे 600 रन किए हैं इज इन द फॉर्म ही शुड बी इन द टीम राइट इस तरह बड़े नाम को ऐसे एकदम ड्रॉप नहीं कर सकते फिर जो नहीं स्कोर कर रहे आप उनको बाहर बिठाएं और जब वो रेडी होंगे तो फिर इनको वापस लेके आए ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया है कि बस रिजवान ने खेलना है तो उसने खेलना ही खेलना है अगर वो नहीं स्कोर करना गिव अ चांस टू समबडी एल्स राइट
1: अभी जो है लाइक यू नो Not as a big team like Scotland or जो USA का मैच होने वाला आज तो अगर ऐसे मैचेस हो रहे तो इसमें कनाडा खेल रही है इस तरह के मैचेस
0: नहीं ये तो उनका उनका आपस में सीरीज हो रही है अब ये आईसीसी की वर्ल्ड सीरीज है इसमें कनाडा का मुझे श्योर नहीं है बट आई विल चेक कि वो कर रही है खेल
1: चलो वेल यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग KWJ स्पोर्ट्स टॉक आज स्पोर्ट लाइट में हमारे गुड फ्रेंड हमजा बट आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलगरी लोकल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट तो लेट मी टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जो फिर से मिल जाएंगे और देन विल टॉक अबाउट मोर और क्या क्या हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदिया ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
3: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
3: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਰਸ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸੰਦਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਚ ਵੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-726-6200 403-726-6200 ਬੜੇ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ
4: ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਘਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ
3: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ
4: ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਨੋਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112
3: ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਟਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ
4: ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ
3: ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

0: वो लास्ट ईयर भी आई थी सोल्ड आउट था, इस बार भी इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर सोल्ड आउट. तो अगर आपने टिकट नहीं लिए, इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, यू कैन कॉल मी एट 5878994786. और जितने हमारे टिकट्स जो है $65 ईच, और but if you buy two, so it's going to be two for $120. So you cannot go wrong with the food and everything. Or joa wahan pe live band hoga. It's not a karaoke, it's a live band. Aur aapke ticket mein se bhi hai jo hai aapka donation bhi ja raha hai. So I think it's a win-win situation for all of us. Ke jo paisa joga wo is going to go to Akhan Foundation Canada, and they use each and every penny for the betterment for the, especially the women's kids and for health and
1: Zulal bhai, cricket ke liye bhi koi fundraising kar le.
0: अच्छा, अभी मेरा झगड़ा होने वाला हमजा भाई के साथ. उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने ये टॉपिक को छेड़ा है. वो जो कहते हैं ना कि अपना आबिल मुझे मार
1: जी. हाँ, हम तो चाहते हैं.
0: मेरी टी शर्ट किधर है भैया?
1: आपकी टी शर्ट अभी गाड़ी में पड़ी है, अभी आपको देते हैं.
0: एक झूठ. अच्छा तो ये अपना करेंगे जब भी अपना क्रेडिट का. सो आई एम रेडी टू डू इट. अपना फंडरेजर, आई एम श्योर बीना जी विल हेल्प मी एज वेल. तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं?
1: हम आपको क्रिकेट के मैच दिखा सकते हैं. आप क्रिकेटर से क्या पूछेंगे? हम आपको क्रिकेट खिला सकते हैं.
0: हाँ
1: बिल्कुल. अच्छा, हम यही कर सकते हैं आपके लिए.
0: ठीक है. नहीं, यू नो, इफ यू डू एनी फंडरेजर बाय ऑल मींस,
1: या वी शुड डू दैट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी स्पोर्ट का. हमें तो कोई फाइनेंसिस नहीं आते. हम तो खुद ही ना, हमें कोई स्पॉन्सर्स मिलते हैं ना कुछ है. वट एवर वी मैनेज, वी रन ओवर क्लब. और हर क्लब जो भी है कैलगरी में, वो फी बेसिस पे होता है कि हर आप प्लेयर से फीस लें $500-600.
0: ठीक है.
1: और उसमें ये इसको रन करना, इट्स नॉट इजी. और फिर आपने लीग को ऑलमोस्ट $10,000 फीस पे करनी है. आई थिंक वी शुड वर्क ऑन समथिंग.
0: कितनी फीस है?
1: ऑलमोस्ट 10,000 के करीब.
0: टू प्ले द सीजन?
1: हाँ जी, सिटी को पे करना पड़ता है ना.
0: सिटी ओके, ग्राउंड के लिए.
1: ग्राउंड के लिए, यस.
0: वो तो आप लोग, अगर आप यू नो यहाँ पे जितनी लीग है, लेट्स से आप जो लीग में खेलते हैं, यू कैन मेंशन अवर नेम. ऑफ कोर्स जो है, वी कैन डू इट. या हम तो कर सकते हैं उनका, तो अपना उनके लिए फंड रेजर
1: करना चाहिए.
0: प्रॉब्लम. सिंगर्स हमारे पास बहुत हैं, एंड वी कैन जस्ट डू इट. आई थिंक इट्स गोना बी ऑसम. आप जितने प्लेयर्स हैं वो एक टेबल ले.
1: बीना जी ने कमेंट किया कि हायर ओवर सिंगर्स. बीना जी, ये तो वॉलंटियर होगा, हायर तो नहीं होगा. वॉलंटियर ही करना पड़ेगा सबको.
0: आप अच्छा शो करें अपना. वो जो कहते हैं ना, वो के टक्सीडो में सारे प्लेयर्स आए अपने एक एक टीम के, वो आप अपना तो टेबल ले सकते हैं ना. एक टेबल ले लें, बाकी जितना एक्सेस होगा ऑफ कोर्स जो इज गोना गो टू योर टीम. बाकी जो यू नो, आल हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग.
1: बिल्कुल वी शुड प्लान
0: समथिंग. अच्छा बीना जी का यहाँ पर सवाल है, हैव यू वॉच एनी आईपीएल गेम्स?
1: जी, अब सो मेनी क्रिकेट गोइंग ऑन. पीएसएल चल रही थी, फिर हम लोग खुद भी कर रहे हैं. राइट, हमारी अपनी भी बहुत टफ रूटीन होती है. प्रैक्टिस हैं, 2-3 प्रैक्टिस है. ट्यूजडे को गेम है. जिस तरह कल गेम था, अगर आप मुझे ऑफर करते मैं कल ना आ सकता. आज का दिन रिलैक्स्ड है. अब कल प्रैक्टिस है दोबारा, फिर फ्राइडे को भी प्रैक्टिस है, सैटरडे को फिर मॉर्निंग में गेम, आफ्टरनून में गेम है. तो हमारा अपना स्केड्यूल बड़ा पैक है. बट यस, क्रिकेट वी वॉच. आज का गेम बहुत अच्छा है. आई वाज वॉचिंग विराट कोहली, यू नो, द वन एंड ओनली, द लेजेंड.
0: Yes.
1: He scored a century today. They were chasing, RCB was chasing almost 192 run, which is not an easy total.
0: Right.
1: Magar Virat Kohli ne usko aise kar diya ki aisa lag raha tha ki ye bahut easy hai. So it was a good game, you know. I enjoyed it. I enjoyed watching cricket, and it's my passion and it's my first love.
0: Yeah. So you know, ye jo PSL hai, IPL hai, abhi jaise Virat Kohli hai, uska kitne ka contract hoga?
1: Waise mujhe I would say almost 20-25 crore Indian.
0: Crore?
1: हाँ, minimum one for one season.
0: One season.
1: 20 crore minimum.
0: जो
1: क्योंकि I know के जो England का player है Jacob Mitchell, उसका contract है almost 15-16 crore का. आप check कर लें बेशक.
0: Yeah, okay.
1: ये इतने हैं, 15-20 crore और higher है.
0: Wow.
1: For one month only.
0: Oh, वो जो अपने 3 month season होता क्या होता है?
1: 2 months ही maximum है, बिल्कुल.
0: Oh God!
1: So, contract
0: leaking. Contract. You know, I'm googling right now as we speak on a live radio. That's the best thing for IPL. Oh my God, Veena ji, let's go play IPL.
1: Ah.
0: Okay, there we go. I just googled it. According to Google, now you have to contact someone.
1: प्राइवेसी होती है, बट मिनिमम 20 crore प्लस है. ये सब प्लेयर जो करंट इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, ये मिनिमम 15 से स्टार्ट होकर 25-20 इस रेंज में, 15 crore से लेकर 25 crore तक, जो भी वर्ल्ड कप जीती है वो भी. और जो अभी करंट इंडिया की, स्पेशली ये विराट कोहली वगैरह, ये मोहम्मद शमी वगैरह का होता है 7-8 crore. ऐसे हार्दिक पांड्या भी अराउंड 20+ crore में है.

0: वाओ यार पीएसएल सेम थिंग
1: नहीं नहीं पीएसएल इज डिफरेंट पीएसएल में जो मैक्स है वो बाबर आजम है 6-7 crores
0: दैट्स इट
1: या साइम अयूब था 6 crore 5 crore इससे वो भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी मनी इज डिफरेंट इंडियन मनी इज डिफरेंट
0: राइट राइट राइट या
1: पीएसएल अभी आईपीएल के लेवल पे नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है आईपीएल इज अ नंबर वन लीग एंड अब देखिए ना आईपीएल के प्लेयर हैं जो वो किसी और लीग में लाओ ही नहीं है खेलना
0: अच्छा
1: राइट दे कैन नॉट प्ले इन एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड सो मेनी क्रिकेट गोइंग ऑन इवन इन कनाडा एंड यूएसए देयर आर लीग्स गोइंग ऑन बट आईपीएल प्लेयर्स दे आईपीएल ऑफर सो मच मनी दैट दे डोंट इवन केयर राइट
0: या दे डोंट केयर तो वो जो यू नो आई एम श्योर उनका जो टीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी इतना बड़ा होगा कि दे कैन अफोर्ड द मनी
1: बीना जी कह रही हैं बीना जी को क्रिकेट खिलाते हैं फिर स्टार्ट करवाते हैं बीना जी आप आए सैटरडे को इंग्लैंड की ग्राउंड में आपको थोड़ा सा बैट पकड़ाते हैं आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं कोचिंग करते हैं ताकि आप भी क्रिकेट की तरफ आए
0: जी जी जी तो अच्छा यू नो चलो ये तो गया मेंस का व्हाट अबाउट वुमेन्स हॉकी जो है क्रिकेट हियर इन कैलगरी
1: वुमेन्स क्रिकेट इज ऑल्सो इज गोइंग ग्रेट इन कैलगरी आई थिंक हमारे पास जो कैलगरी में ऑलमोस्ट 6-7 teams है वुमेन की और उसमें से एक टीम सिटी के लिए भी सिलेक्ट होती है और हमारे पास मैं ज्यादातर वुमेन्स आई हैव सीन देम दे आर प्रैक्टिसिंग इन कवर ड्राइव एंड सम आर प्रैक्टिसिंग इन फ्यूचर स्टार देयर इज अ प्रॉपर लीग इवन द गर्ल्स एज वेल राइट द वुमेन एज वेल प्लस द गर्ल्स अंडर 15 अंडर 16 की टीम भी बनती है कैलगरी से और इसी तरह बच्चों की भी टीम ऐसी अंडर 15 अंडर 16 की टीम भी
0: तो यू नो जो हमारा नेक्स्ट होगा क्रिकेट का जो है मेबी वी कैन इनवाइट वन ऑफ द जो फीमेल प्लेयर
1: फॉर श्योर
0: जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपने क्या हो रहा है सो दे कैन स्पीक ऑफ कोर्स अगर किसी को ज्वाइन करना तो व्हाट्स द प्रोसेस फॉर द फीमेल क्रिकेट
1: आप मुझे कनेक्ट करें मैं आपको कनेक्ट करवा
0: दूंगा चलो वेरी गुड या तो अपना और क्या हो रहा है लोकल क्रिकेट में आजकल
1: लोकल क्रिकेट में
0: अदर जो लीग जो चल रही साउथ में नॉर्थ में क्या चल रही है
1: एक ही लीग ही चलती है यहाँ पे कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग कंट्रोल करता है उसको सीडीसीएल उसको कंट्रोल करता है जो सिटी के साथ एसोसिएटेड है और वहीं से प्लेयर फिर आगे ग्रूम होकर आगे निकलते हैं और उसी में बहुत सारी टीमें हैं
0: जी तो अगर जिसमें अभी जैसे हॉकी में होता है अपना जो एनएचएल में कैलगरी फ्लेम्स लेट्स से वो अपना खेल रहे हैं देन दे ट्रेड प्लेयर्स यहाँ पे भी ऐसा होता है लीग यहाँ पे क्रिकेट में ऐसा कोई है
1: नहीं ट्रेड नहीं होते यहाँ पे देखें एनएफएल वगैरह जो आप हॉकी में हैं वो तो पेड प्लेयर्स होते हैं
0: राइट
1: यहाँ पे कैलगरी में ऐसा नहीं है कैलगरी में तो लोकल प्लेयर्स हैं और आई विश के कैलगरी की क्रिकेट इस लेवल पे चली जाए कि वो भी इस लेवल आए जो डिजर्विंग लोग हैं वो दे शुड बी गेट पेड
0: या तो अगर हम जैसे किसी एक प्लेयर को अगर एक टीम को छोड़कर दूसरी टीम में जाना हो लेकिन जस्ट
1: यू कैन डू इट वंस इन अ सीजन
0: ओके सो देयर इज ओके सो पीपल कैन डू दैट अच्छा तो जो तुम्हारा पिछला मैच था उसमें जोहेब ही वाज जो है मैन ऑफ द मैच
1: He performed very well, yes.
0: Yeah, तो उसने 90 रन बनाए थे
1: जी जी 52 बॉल्स पे ही उसने ऑलमोस्ट 8 sixes and 4 fours लॉन्ग सिक्स सारे टीवी पे पड़े हुए हैं जस्ट गूगल एंड वॉच इज बैटिंग कैलगरी
0: मे बी वी कैन यू नो वी कैन हैव हिम नेक्स्ट टाइम यू नो वी डू क्रिकेट शो
1: he's busy, I know. उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट
0: है I know.
1: उसकी जॉब होती है फिर प्रैक्टिस है ना आजकल तो फिर मैचेस चल रहे हैं यू नो मे बी ही इज प्लेइंग टुडे एज वेल समवेयर सो
0: तो ये अपना और किस किस के साथ खेलते हैं
1: आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
0: प्रैक्टिस यस यस यस
1: अच्छा जिम है प्रैक्टिस है मैंने आपको बताया बगैर जिम के जलाल भाई शर्ट नहीं मिल सकती जिम करना पड़ेगा वेट लूज करना पड़ेगा बिल्कुल टमी फ्लैट करना पड़ेगा फिर आपको शर्ट मिलेगी
0: चलो
1: सीसीए की शर्ट
0: एक्सक्यूज के ऊपर
1: करना पड़ेगा आपको क्रिकेट
0: चलो आई थिंक ये जो है हमारा हमसे आखिरी शो है यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये तो यहाँ पे नहीं आएंगे
1: नहीं जलाल भाई हम जरूर आएंगे
0: बिल्कुल मैं तुम्हें जबरदस्त ले आऊंगा या तो यू नो जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट के या तो स्पोर्ट्स की इन जनरल आजकल जो है नाउ द समर टाइम इज हियर जो बहुत से बच्चे आई थिंक यू सी ऑल द जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आर फुल चाहे वो छोटे बच्चे हों बड़े हों सॉकर प्रैक्टिस हो या तो कोई और अपना स्पोर्ट्स खेल रहे लेकिन जो हमारे जो हैं हमारे पाकिस्तानी इंडियन स्पेशली जो साउथ एशियन के बच्चों को हम अगर हमें बच्चों को फोर्स करना हो कि भाई क्रिकेट भी देखो क्रिकेट भी खेलो तो हम एज ए टीम व्हाट कैन वी डू
1: देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी
0: फोर्स नहीं कर सकते ओके या आई गेट दैट या
1: सो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप उनको उसमें लेके आए यही मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने यही मेंशन किया था कि जब तक आप बच्चों को दिखाएंगे नहीं तो उनको कैसे शौक पैदा होगा राइट आप उनको ग्राउंड में लेके आए उनके साथ वॉक अराउंड करें दे सॉ इट एंड दे वांट टू प्ले अब जिस तरह मेरी डॉटर्स हैं राइट दे सॉ मी प्लेइंग एंड नाउ दे वांट टू प्ले क्रिकेट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको लाएं दिखाएं ताकि उनमें शौक पैदा होगा जब वो देखेंगे नहीं वो सोकर देखेंगे तो वो सोकर खेलेंगे जब वो क्रिकेट देखेंगे तो वो क्रिकेट खेलेंगे तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है

0: तो इसमें टी ट्वेंटी
1: रेगुलर सीजन
0: इसमें टी ट्वेंटी होते हैं और इसमें 40 ओवर्स ओडीआई होते हैं
1: ठीक है
0: 10 टी ट्वेंटीज होते हैं और 10 ODIs होते हैं
1: फिर उसके बाद प्लेऑफ का जो
0: फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स में तो फिर आप प्लेऑफ्स खेलते हैं
1: तो फिर प्लेऑफ्स का क्या है अपना टॉप फोर टॉप सिक्स क्या होता है
0: टॉप टी ट्वेंटी में टॉप फोर जाती हैं प्लेऑफ्स में और ओडीआई में टॉप थ्री जाती हैं
1: ओ चलो गुड टू नो तो यहाँ पे जहाँ पर मैचेस होते हैं वहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दे ब्लीचर्स एनीथिंग
0: बिल्कुल बेंचेस हैं
1: बिल्कुल
0: वेस्ट विंड के ग्राउंड में भी हैं और इंग्लैंड में भी हैं रायली पार्क में भी हैं बेंचेस
1: वेरी गुड गाइस अगर आपने कुछ आप जो शाम को आपके पास टाइम है यू कैन वॉच वेस्ट विंड चले जाए या तो नॉर्थ वेस्ट में इनलैंड जो कि अपना स्टोनी ट्रेल पर है स्टोनी एंड सारसी
0: एग्जैक्टली
1: और फिर साउथ में किधर है
0: रायली पार्क
1: और रायली पार्क डाउन टाउन या कैंसिंगटन तो आप जो है वहां भी जा सकते हैं वो भी अपना बड़ा अच्छा बल्कि पहले वहीं क्रिकेट खेलते थे
0: जी पहले
1: वहां से फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर हमें
0: जो तो बहुत डेवलप हो गई
1: या जी जी जी जी जी यार मैं अपना पिछले साल हम जो है दुबई में गए थे दुबई हमारे जो ग्लोबल इनकाउंटर्स गेम भी थी फॉर द इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी की वहां पे सारे तकरीबन 20-25 मुल्कों से सारे स्पोर्ट्स के सब अपना जो प्लेयर्स आए हुए थे उसमें वुमेन्स की टीम भी थी मेंस की टीम भी थी तो अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक आई थिंक एक दो हफ्ते पहले हमने न्यूज देखी कि जो अफगानिस्तान की जो वुमेन्स की जो है सॉकर टीम है जो सेलेक्ट हुई है उसमें से हाफ द प्लेयर आर फ्रॉम दैट टीम जो कि अपने दुबई में आई थी फ्रॉम आवर कम्युनिटी
0: वाओ
1: या इट्स सो मैंने जो लास्ट वीक मैंने न्यूज देखी मतलब यू नो व्हाट आई विल बी लाइक यू नो आई ट्राई टू गेट देम इन टच विद मी एंड होपफुली दे कैन जॉइन अस लाइव और यू नो ऑनलाइन में आके हमें जो इंटरव्यू वगैरह
0: वेरी नाइस
1: आई थिंक दिस इज ह्यूज फॉर स्पेशली फॉर फीमेल एंड स्पेशल ऑफ कोर्स जो है अपना इन जनरल जो है अपना अपना जो सॉकर टीम के लिए आई थिंक दिस इज ह्यूज ह्यूज है अपना उनका जो मिला है दर्जा उनको मिला थिंक दिस इज गुड एनीथिंग यू जो एनी लाइक एनीथिंग यू वांट टू
0: ऐड मैं बिल्कुल कहूंगा कि इफ यू वांट टू प्ले इन कैलगरी यू नो कांटेक्ट मी और कांटेक्ट जलाल भाई
1: यस आई कैन गेट यू
0: लोकल क्लब हियर इन कैलगरी कैलगरी बेस्ड क्लब है कैलगरी क्रिकेट एकेडमी और इसको सपोर्ट करें और आके मैचेस देखा करें टाइम अपना निकालें कॉफी लेके आ जाए ग्राउंड में बैठे थोड़ा इंजॉय करें एवरीडे मैच है वीकेंड में भी मैच है वेस्ट विंड की क्रिकेट ग्राउंड है और जिस तरह के जलाल भाई ने बताया इंग्लैंड की ग्राउंड है वी वांट पीपल टू कम एंड वॉच अस यू नो ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है तो प्लीज यू नो जो भी ये देख रहा है उसको आए और इसको स्प्रेड भी आगे अराउंड करें
1: या यू नो जो टॉक टू योर फ्रेंड्स गो एज अ ग्रुप यू नो अपना जो फैमिली जो आज से बहुत अच्छा है गो एज अ ग्रुप कि आपके अगर जो है बी बच्चे हैं तो आप
0: वॉक अराउंड करें वहां पे वॉक करें बैठे एंजॉय करें फैमिली के साथ आए बिल्कुल
1: जो है गुजारी और जो यू नो जो सारी टीम्स होती है यू नो दे वेयर दिस काइंड ऑफ शर्ट प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं मैं भी मेरा वेट कर रहा हूँ 3 साल हो गया मुझे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई शर्ट और नो आई थिंक दिस इज ग्रेट जो आज की जो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी हमजा भाई मजा आ गया और आई नो देर वर सम स्मॉल डिटेल्स लेकिन वो बहुत जरूरी है अगर किसी को देखने जाना हो या तो किसी को जो ज्वाइन करना हो क्रिकेट की टीम में तो अच्छा आपकी टीम में अभी कितने प्लेयर्स हैं
0: हमारी टीम में है अराउंड 18-20 प्लेयर्स हैं
1: अच्छा
0: यस यस
1: तो उसमें सिलेक्शन होता है नॉट जैसा
0: जी वो तो कैप्टन सेलेक्ट करता है ना टीम और वो फिर अनाउंस करते हैं टीम
1: बीना जी कह रही है कि उनका एड्रेस और जो है टाइमिंग्स क्या है उनकी वेबसाइट क्या है
0: आप गूगल कर सकते हैं वेस्ट विंड क्रिकेट ग्राउंड आ जाएगा वेस्ट विंड पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे है और जो इनलैंड की ग्राउंड है वो सारसी ट्रेल के ऊपर है बिल्कुल वो भी गूगल करेंगे तो वो आ जाएगी और टाइमिंग्स ये वीकेंड्स में तो 6 बजे के बाद होती वीकडेज में 6 o'clock है वीकेंड में तो फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 9 o'clock फ्रॉम 9 AM टू 9 PM नॉन स्टॉप क्रिकेट है
1: चलो आई थिंक दिस इज ग्रेट आज का जो हमारा शो है इसको स्पॉन्सर क्या है ऑप्टिमा आईवेयर अपना एंड ऑप्टोमेट्री इसका फोन नंबर है 4033-463-6666 अगर आपने चश्मे के आपके नंबर्स लेने हैं डॉक्टर से आपने जो चेकअप करवाना है कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए सनग्लास चाहिए यू कैन विजिट नोलन हिल लोकेशन आई बी देयर एज वेल लाइक बिकॉज आई वर्क देयर यू कैन कॉन्टेक्ट और यू कैन कॉल मी जो है डायरेक्टली लेकिन वहाँ का जो अपना जो क्लिनिक का जो है फोन नंबर 4033-463-6666 सुल्तान बैंक्वेट हॉल अगर आपने कोई भी बड़ा इवेंट करवाना हो शादी का हो एनिवर्सरी हो बर्थडे हो जैसे हम हमारा प्रोग्राम करवा रहे फंड रेजर इट्स ऑन द May 23rd तो अगर आप करवाना हो यू कैन कॉन्टेक्ट अवर गुड फ्रेंड गुलाम रसूल साहब इनका फोन नंबर है 4032806677 मेकअप आर्टिस्ट सोनी मिर्जा अवर लाइक अवर गुड फ्रेंड अभी आजकल जैसे जो है ग्रेजुएशन आने वाला है अगर आपने मेकअप करवाना है शी इज द बेस्ट इनका फोन नंबर 5878889316 मुझे याद है पहली बार जब हम सब आए थे मेकअप करवा के आए थे उन्हीं से
0: जी बिल्कुल
1: शी इज द बेस्ट काश्यप पेंटिंग हावर

0: फिर शफी जीवानी अगर आपने कोई भी प्रिंटिंग करवानी हो कॉन्सर्ट टिकट्स हो कुछ भी प्रिंट करवाना हो डिजाइन करवाना हो बिकॉज लाइक दिस आई डू माई वर्क तो अवर गुड फ्रेंड शफी जीवानी 4032502202 अगर आपने स्पॉन्सर करना हो शो को तो यू कैन टेक्स्ट मी एट 5878994786 हमें एक और जो है नए हमारे मिले हैं he's gonna start from next week वो कौन है I'll be posting on our on my Facebook very soon अपना हमजा भाई I know you like जो है you asked me as well पिछले महीने हमने शुरू किया KWJ drama desk
1: जी
0: It's all about the Pakistani dramas, reviews and commentary on it. Jo hamara panel tha, usme tha Ansa and jo Salma Jadavi. They were the like my panel. We talk about the jo hai Pakistan drama, top 7 to 10 dramas. This week, bada hit gaya wo bhi show, kafi logon ki jo feedback achi aayi. This week is going to be next Wednesday, 8 PM, right here on the KWJ Sports, not Sports, KWJ Drama Desk. Aur is baar hum jo hain, हमारे जो है सलमा जी भी होंगी जो है अंसा जी भी होंगी प्लस वी कैन हैव समवन फ्रॉम द ऑडियंस जो है सोहेल काशिफ ही इज वेरी इंटरेस्टेड आई नो यू सो यू टोल्ड मी एज वेल के यू वॉच एज वेल मे बी द नेक्स्ट मंथ हमारा होगा
1: आई लव पाकिस्तानी ड्रामा
0: या वी विल इनवाइट यू एज वेल आई एंड जो है टॉक अबाउट द टॉप 5 टू टॉप 7 जो है पाकिस्तान
1: आई थिंक टॉप 5 है अभी जो मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं उसमें हमराही
0: आई नो इट्स गोइंग
1: अमेजिंग उसमें गुलाम बादशाह सुंदरी है
0: यस वो भी अच्छे
1: चल रहे हैं
0: तो वो सारे ड्रामे
1: शदाई है
0: राइट लास्ट वीक जो हमारा जो टॉप ड्रामा था वो था कफील
1: कफील वाज आल्सो फैंटास्टिक
0: यस यस और साथ में ऑफ कोर्स जो टॉप आर्टिस्ट थी नन अदर देन जो है अपना और मोहम्मा में कौन थी
1: Sabah Qamar. She was a fabulous.
0: Oh my man.
1: She's my favorite.
0: She's next level.
1: She's next level.
0: She's next level. So next Wednesday we're gonna have a next edition of the KWJ Drama Desk. And of course, aaj you are watching Spotlight pe hamara jo Hamza Bhatt and we are talking about the Calgary. Hamza bhai, 9 baj gaye. Let's jo finish jo show. Thank you so much
1: thank
0: for
1: you.
0: Coming in.
1: Thank you.
0: Bahut aur jo hame dekh rahe hain, sun rahe hain, thank you so much for watching and listening. Coffee Jalal on Radio Sangam 94.7 FM. We'll talk to you next Tuesday. Thank you.
1: Thank you.
2: The time is 9 p.m.
3: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तों लै के हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड
3: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
3: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222 अपने घर दा दूजा नां आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती
2: घर खरीदण तों पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ
3: वधिया घर खरीदना पैसे बचाउणे ने सिरदर्दी तों वी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल
2: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल
3: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस
2: ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868
3: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor
2: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868
4: ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ
5: ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208
2: ਰੇਡੀਓ ਸਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਸੰਨ 2026 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:10 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ

तक मेरा ते आप जी दा साथ रहेगा। आज दे इस प्रोग्राम विच बहुत सारियां खबरां ते चर्चा करांगे, इस दे नाल नाल मौसम दी भी गलबात कीती जावेगी। एक सवाल भी होगा आज दे प्रोग्राम विच, जिस ते गिफ्ट कार्ड अपने सही जवाब देने वाले लिसनर्स नूं दिते जाणगे। ते प्रोग्राम दे दूसरे हिस्से दे विच एक गलबात भी, एक्सपर्ट गलबात भी पेश करांगे। सो ये साडे अज दे प्रोग्राम दा वेरवा। शुरुआत करते हैं जी मौसम दे हाल तो। इस वेले 19 डिग्री सैलसीयस है, रात नूं 7 जां 8 तक जाण दी संभावना है। शहर दे किसे किसे इलाके दे विच हल्की फुल्की बारिश तो नहीं कह सकते, बूंदाबांदी कह सकते हैं, ड्रिजल, इसे तरह का मौसम रहण दी संभावना है। कल नूं बत बत 15 ते घट तो उस तो अगले दिन शनिचरवार नूं हल्की बारिश ते 6 डिग्री सैलसीयस, ऐतवार नूं 9 डिग्री ते सोमवार तो फिर प्लस 13 14 15 दे आसपास टैंपरेचर रहण दी संभावना बनी हुई है जी। शहर दे कुछ हिस्सों विच हवावां भी चल रही ने, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रही ने। जिवें असीं कल दस्या सी कि उत्तरी अलबर्टा दे कुछ हिस्सों दे विच तेज हवावां दी वार्निंग है, नाल मैनीटोबा सस्कैचून दे कुछ इलाके भी शामिल ने, ब्रिटिश कोलंबिया दे भी। ये स्थिति है, हवावां लेकिन उत्तरी अलबर्टा वल ज्यादा ने, दक्षण वल थोड़ा जा असर उन्हां दा घट है। हाँ, उधर तेज हवा चलती होवे तो थोड़ी बहुती तो सानू भी महसूस होगी। खैर, रंग बिरंगा जा मौसम है, कुल मिला के क्लीन है, साफ है। प्रोग्राम विच अगे चलदे हां, जिहड़ियां खबरां ते असीं चर्चा करनी है उन्हां विच सारी दुनिया दीआं निगाहां जो टिकियां ने चाइना अते यूएसए दे उपर। चीन गए ने डोनाल्ड ट्रंप, उत्थे किहड़े किहड़े मुद्दिआं ते गलबात होई दसी जांदी है, किस तरह की स्थिति बनी है ते डोनाल्ड ट्रंप की कह रहे ने, इहदे बारे गल करांगे। कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर मार्क कारनी बहुत फास्ट काम कर रहे ने ते चर्चा विच ने। अज दे प्रोग्राम विच तीन चार खबरां उन्हां नाल ही रिलेटड ने, जिस विच अलबर्टा दे विच एक पोटेंशियल क्रूड ऑयल कच्चे तेल दी पाइपलाइन बारे ओ गलबात कर सकते ने। ते उन्होंने कहा कि असी इस ते कुछ अगे कार्रवाई की है। दूसरा अलबर्टा बाबत ही कहते ने कि अलबर्टा ले कनेडा दे विच बेस्ट जगह, अलबर्टा वास्ते बेस्ट जगह कनेडा दे विच ही है, कनेडा तो बाहर नहीं। अगली गल कि कल कैलगरी शहर विच आ सकते ने, पूरी संभावना है। उस तो अगली गल कि कुछ प्रोजेक्ट उन्हां दी फाइनेंसिंग वास्ते एयरपोर्ट वर्गे इंफ्रास्ट्रक्चर नूं प्राइवेट हत्थां विच देण दे हक विच ने मार्क कारनी। ते मार्क कारनी नाल ही संबंधित अगली गल कि 2050 तक उन्होंने ऐलान किया है कि बिजली दी उत्पादन ताकत दुगनी करन दी स्कीम लाई जा रही है कनेडा विच। 2050 तक बिजली होण नालों दुगनी उत्पादन की जाएगी। ते होंडा वालों जिस प्लांट नूं थोड़ा पोस्टपोन दी जां पॉज करन दी गल आखी सी, जिवें असीं उस दिन भी आख्या सी कि लफ्ज़े वरते जांदे ने वख वख विश्लेषण ला के, वह प्लांट हुण खटाई विच है, बिल्कुल उसनों पक्के तौर ते किस्म दा इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिता गया अणमिथे समय लई।

0: तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिर दे?
1: ओ पाजी ये ऐसी नहीं, JFS इमिग्रेशन वाले ने कट्ठा करके देता है। JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004।
2: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: रेडियो सर संगम 94.7 FM ते जी खबरां दा सिलसिला जारी रखदे आ, ते हुण सवाल भी नाल सांझा कर लैंदे आ जी। सवाल यह है जी कि वजन के हिसाब नाल, वेट के हिसाब नाल दुनिया का सब तो महंगा स्पाइस केड़ा है? स्पाइस हुण मसाला, चाहे वह फल के रूप दे विच कितों लिया गया हो, जड़ के रूप में लिया गया हो, पत्तियां दे रूप में लिया गया हो, यह तुसीं हुण देख लेना कि फुल दे जड़ दे पत्तियां दे रूप दे विच जो लिया जांदा, इस विचों सब तो महंगा स्पाइस मसाला केड़ा है जी दुनिया का? वजन के हिसाब नाल, वेट के हिसाब नाल सब तो महंगा मसाला जिहड़ा स्पाइस है जी, वह केड़ा है? उहदा नाम तुसीं जां सानूं लिख के भेज दिओ वट्सएप ते 403-902-1323, 403-902-1323, जां तुसीं सानूं डायरैक्ट कॉल करके अपना जवाब दे दिओ। फोन नंबर नोट कर लो जी 403-902-1323। खबरां असीं साझियां करदे रहांगे, जदों विच कोई कॉल आवेगी साडे लिसनर दी ते असीं सवाल दा जवाब भी नोट करांगे। असीं मार्क कारनी कनेडा दे प्राइम मिनिस्टर कहिंदे ने कि अलबर्टा कनेडा दे नाल ही सोहणा लगदा। सैपरेशन की गल ते उन्हां ने जो अपने विचार दिते ने उस विचों कहिंदे ने कि बेस्ट प्लेस जिहड़ी अलबर्टा लई है वह कैनेडा दे विच ही है। सैपरेशन पटीशन दे बारे कल एक जज ने फैसला जो सुनाया सी उस बारे अजे सैपरेटिस्ट ग्रुप ते अलबर्टा सरकार अपना कानूनी पक्ष अगला विचार रहियां ने, पर प्राइम मिनिस्टर जिहड़े ने उन्हां दा एक कमेंट जिहड़ा एक दिन बाद च आया, जिस विच रेफरेंडम जिहड़ा सैपरेशन ते जिहड़ा करवाउण दी कोशिश की जा रही है उहदे बारे गलबात कर लई सी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਸੰਗਮ ਰੇਡੀਓ,
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
5: ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਫਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਫਰੋਨ
4: ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰ ਡਿਜਿਟ ਬੋਲੋ ਜੀ।
5: ਕੇਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4275 4275।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
6: ਹਾਂਜੀ ਪੇਲੀਆ ਬੋਲਦਾ।
4: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
6: ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਸਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੁੱਲ ਚ ਮਿਲਦਾ।
4: ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ?
6: ਸਰਪੰਚ ਪੇਲੀਆ
5: ਬੋਲਦਾ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰ ਡਿਜਿਟ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਆਖਰੀ।
6: ਸੰਤਾਲੀ ਸਤਾਸੀ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 403-902-1323, 403-902-1323। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੁੱਲ ਸਪਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। $10 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-902-1323 ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਪਾਈਸ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਆਓ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फिर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फिर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 4039036757
6: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ
5: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने तीन टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनिया नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
7: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
8: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ

0: ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदने दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकतियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.